सुजन हो त्रेसठ नारद भक्ति सूत्र स्त्री धननादिक चरित्रम न श्रवणीयम। यथार्थ असा, साधक भक्तान काम प्रदीप्त करणारी स्त्री, निषिद्ध धन तसच नास्तिक पाखंडी व्यक्तींचं चरित्र

0: भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई दे रहे हैं।
0: तो लंगड़ा बोला,
1: चलो चलो भाग चलते हैं।
0: तो भिखारी बोला,
2: अरे जल्दी कर।

0: मियाँ बीवी आठवीं मंजिल पर रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

0: एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा,
1: हुजूर, गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूँ।
0: उस आदमी ने पूछा, कहाँ है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,
1: हुजूर, वो पास वाले

0: कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, रहने दो बेकार की बातें।
1: बेकार की बातें?
0: हाँ हाँ, सुन लेगा बेदर्द।

कमरी छोटी, कैरम बोर्ड में कैसे फिट होगी शतरंज की गोटी, बोलो सारा रारा। अरे गोरा चिट्टा हमरा, भैया बेटी तुम्हारी काली।

जो न बन पाऊं तो दुख होगा तुझे भी थोड़ा, लेकिन एक बात मेरे बच्चे तुझे याद रहे, लेकिन एक बात

है तुझको अगर दुनिया का डर तुझ जा मेरी आंखों में, है तुझको अगर दुनिया का डर तुझ जा मेरी आंखों में।